बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिवे हिफे मुं मिगडी गे खबर आए को एहुं तेरे नाम में बदल कुरी अहम चमला दिवे राज्य के सकाफत आठारिक रखा तेरी कुरुमशा मी दायरा इन देगो मुगे गुलुं इतुरा बदे ही कुरुमगे गोतुं चाइना के टियनजिन नेशन मेरिटाइम म्यूजियम माध्यमे दो मुहिमु एबसुमे का सोय कोफी मी एबसुमगे राज्य के फरातन सोय कुरे भी फन्ना सकाफत आठारिक आब हे वजीर हीना वलीद आदि चाइना के फरातन सोय कुरे भी टीएनजी नेशनल मेरिटाइम म्यूजियम के डायरेक्टर वांग लोंग मेबसुम के दशम कुरिय केंद्रीय मंगम जीफावा एमए मुहिम मुकमकी मियानहर के कुरीकोळ चाइना के टीएनजी नेशनल मेरिटाइम म्यूजियम के खास एग्जीबिशन ने राज्य के दारु लासारु गबे बुं अदे राज्य के खास एग्जीबिशन ने चाइना के सिटी तहुगे म्यूजियम तहुग बेबुम बिस्वनी एपस वेफा मी राज्य के दारु लासारु इसनगाकें गौमुं बेरुग मिफद एग्जीबिशन ने बाबा फुरतम फहर तिलफुशी का गायम कुरा वेस्ट एनर्जी प्लांट के मसेके दिहास अशाविहुगे नियल निम्मा बेनु कुरम फिशेने कमा तिमावटा बेहे उजारे मिदाड़ वेजे तिलफुशी वेस्ट एनर्जी प्लांट हवाल को फवनी बिल्ड एंड ऑपरेट उसूलों राज्य के केरारिश के एकशी गें बागोतु का कुनी मेनेज कुरिवेने निजाम ने तुमगे सबबुं वाकी वाकी रारिश के या अतल फेमर गविस में निजाम हरतना कुरम टकादनी मसेके कुरमों एगुतु मिहार विस को मेरा शिग बेनु वा सामान आयगु कुनी कोशित थरगी कुरम के मसे के तंगने नी कुरमु राज्य के सते कनावा विस रशिग कुनी मैनेज कुरा मरकस्तं अन्नहर गे जुलाई महुगे नियल निमु मंगननी मसे के कुरमु गेवशी अनिया के शिकारे का वामी हुनंग ही तरीकम फोर को दे थी मरकज तरक्की कुरम के मसके कुरमुं दाकमा सिहता आइला या इज्तिमा एही या बेहे वजीर किलाली विदाड़वेज मे मसके तकी गेवशी अनिया के शिकारे का वामी हुन रक्का तरीकंदी एमी हुं आम दिरियुल मद्दियुम बेनु वा एमी हा ही तरीकम अशा जे निजामे गे तरीकम फोर को दिनु गायम कुरा मरकज तके दिवेराज्य गडुगे आहाशे बुनानं प्रोग्राम का वाहकफुल दकोमुं सिहता आयला या इज्तिमा एही या बेहे वजीर के लाली विदाड़वी राज्य के तीन सरहद्दुग मरकस्ता कायम कुर्मान निमाफ वाकमा मेगे तिरें अड्डू सिटी का हदा मरकस के मसेके कुराने बायको होदुमा मियहर यूलान को फवे ए मसेके गेंदनी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के एही गहिंगा स्ट्रेथनिंग जेंडर इनक्लूसिव इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के दशों सरकारों कंडाला फावा अमाज वासल वुमा मिहां तरां अं अतले के अर रशुगा FSM के फील शेट कायम कर निम्मा फवाकमा इक्तसादी तरक्की आविय फारिया दतुर फदुराब हे वजीर मोहम्मद सईद विदाड़वेजे वजीर विदाड़वी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज वाउदवे वडैम फवागोता कोम्मे अतले के विस्मस्वरी नारायी तुनां STO रेटुगा थेवली बेने इंतिसाम कायम कुरुमा फेशी मसेकें हालुवी कमाए को कुरियता कमा

0: सा से। बाय लवता की नुनी में वाहक तके ए वाहकता मिहारु आ अडका आ रूहकाय ए फोरिया ए जोश गेंगुस्तेनी मुलिं एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट दू जाऊन उठन बिटन लावनी की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देख तू इधर कच्चे तू
0: हवा अदे रिमिक्स की बदले नो एक हमको लवे के निस्ते आ देरु में कोमे हो मत वही के मिंदरु दे जहार रिपीट अंगार दो हुगेरे दिहे जहार अदे बुद्ध दो हुगेरे बार जहार
2: नॉक नॉक तेरा बाप पाया
3: Version 2.0
4: Division FM 9.1 MHz

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गार्ड दिवे ही एफएम दिवे ही नाइक दिवे ही नाइक
1: नोदी है 1 मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम
2: लवे कफ बहुत लवे

0: उत्साह से। बाई लवता की नुनी में वाहक तके ए वाहकता मिहारु आ अडका आ रूहकाय ए फोरिया ए जोश किंगुस्तिनी मुलिं एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या बैठ तू जाऊन उठना बिठना लाऊ नहीं की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देखा तू इधर कच्चे तू
0: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो एक हम को लवे के नस्ते आ देरु में को में हो मत वही के मिंदरु दे जहार रिपीट अंगार दो हुगेरे दिहे जहार अधे बुद्ध दो हुगेरे बार जहार
2: नॉक नॉक तेरा बाप पाया
3: Version 2.0
4: Me is my the fun.